प्रसाद लाइव इन कॉन्सर्ट रॉक स्टार TSP लाइव जून 26th 8 PM एट सैन होजे सिविक ग्रुप डिस्काउंट्स आर नाउ लाइव गेट 15% ऑफ व्हेन यू बुक 4+ टिकट्स इन VVIP VIP और प्लैटिनम कैटेगरीज गेट 10% ऑफ व्हेन यू बुक 4+ टिकट्स इन गोल्ड गेट 10% ऑफ व्हेन यू बुक 10